लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।

0: देशहिताच्या आव्हानाला सकारात्मक प्रतिसाद अढावतकर ज्वेलर्स।
1: आता योग्य वेळ सोन्याचं नवं करण्याची।
0: एक्सचेंज करते वेळी तुमच्या जुन्या सोन्याची व्हॅल्यू 1% वाढवून मिळेल
1: आणि मजुरीत 50% सूट।
0: तुमचं जुनं सोनं आहे भारताची नवी ताकद।
1: विश्वास नाशिककरांचा।
0: अढावतकर ज्वेलर्स, अगोरा कॉम्प्लेक्स, कॅनडा कॉर्नर, नाशिक।
2: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थीं, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादवां भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे, बिलकती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है, न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया।
3: अहो, पैशांची गरज आहे तर इकडे तिकडे कशाला मागायचे, आपल्याकडील सोनं देऊन नामको बँकेचे हक्काचे सोने तारण कर्ज घ्यायचे, तेही एका तासात।
4: व्याजदर 8.9% आणि शेतकऱ्यांसाठी व्याजदर 8.5%,
3: मुदत 1 वर्ष। आजच आपल्या नामको बँक शाखेला भेट द्या, नियम वाटी लागू।
5: अगं हे बघ, अधिक मासे कृतम पुण्यम अक्षयम भवती सर्वदा।
6: हो, लक्ष्मी स्वरूप लेख आणि विष्णू स्वरूप जावयाला वाण द्यावं अधिकार, चांदीचं वाण अधिक फलदायी असतं असं म्हणतात।
5: चला आपण वडनेरे सराफांकडे जाऊया, कारण तिथे रास्त मजुरी आणि चांदीची भरपूर व्हरायटी, चांदीचे सुंदर दिवे, आकर्षक दागिने, पूजा उपकरणी, चांदीची भांडी, देवतांच्या मोहक मूर्ती आणि बरच काही।
6: अगोबाई, म्हणजे सगळं काही एकाच ठिकाणी?
5: वडनेरे सराफ,
6: श्रद्धा संकुल, जुना गंगापूर नाका
5: आणि आकाश पेट्रोल पंपासमोर, दिंडोरी रोड, नाशिक।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

0: नमस्कार नाशिककर, मी नेहा पेंडसे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है.

मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुंदर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे।

वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।